पौड़ी बड़ी हुंडा पार तेरा मर्द बारंग परंग ने कंजा अपन कर दवा जी आंद्र जी सब की जान ला सब की तेरा बस तेरा घर पल तेरा कारण बधाई तो एक घर मान मत ते जा अपने आप जर सर्व कला भरपूर दी सजित कथा नानक दास दा ते आ गबन वत्ता श्लोक कौन गुरु बाणी पिता माता धरत बात दिवस रात दुई दाई दाया की ले सकल जगत चंगियाया।

महापुरख ने उन्हां दा जिहड़ा जीवन है वह जीवन किहो जिहा हुंदा है। महापुरखां दा जिहड़ा जीवन है संत शब्द के अर्थ ही जेकर आपां करिए ते संत शब्द के तीन अखर ने, पहला अखर है सस्सा, उत्ते टिप्पी जिहड़ी नन्ने की आवाज दिंदी है, ते तीसरा है तत्ता। सस्से का अर्थ है सिमरन करना, जिवें गुरबाणी कहती है सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद। महापुरखां दा काम जिहड़ा है वह आ नाम जपना। हुण इत्थे यह भी गल जान दईए कि जिहड़ा भी गुरसिख है, कोई आपां संत कह दिंदे आ, गुरसिख कह दिंदे आ, साधु कह दिंदे आ, पर गुरबाणी दे विच जेकर उन्हां दी परिभाषा नूं देखिया जावे ते मर्ज कहिंदे जिन्ना सास गुरास ना विसरै हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका पूर्ण सोई संत। ते दूजे पासे गुरसिख वास्ते भी मर्ज कहिंदे ने जो सास गुरास त्याए मेरा हर हर सो गुरसिख गुरु मन पावे। कहिंदे गुरसिख ओ आ जिहड़ा स्वास स्वास निरंकार दा नाम ध्यांदा है, जिहड़ा स्वास स्वास उस परमेश्वर दा सिमरन करदा है, ते संत दी परिभाषा भी इहो ही है। तो महापुरखां दा जीवन सस्सा कहिंदा है सिमरन, ते उत्ते टिप्पी जिहड़ी नन्ने दी आवाज दिंदी आ, नन्ने दा अर्थ है निम्रता। निम्रता होनी बहुत जरूरी है, गुरसिख दे विच निम्रता होनी चाहीदी है, महापुरख दे विच निम्रता होनी चाहीदी है, क्योंकि हर जीओ हंकार ना पावे वेद कूक सुनावे। कहिंदे उस रब नूं परमेश्वर नूं माण नहीं पाउंदा, उहनूं हंकार नहीं चंगा लगदा, जिहदे अंदर निम्रता हुंदी है बख्शिश भी उहदे ते हुंदी है। नन्ना अखर कहिंदा है निम्रता, ते तीसरा अखर है तत्ता, तत्ते दा अर्थ है त्याग। सिमरन निम्रता ते त्याग, जिवें बीबियां गहने पाउंदियां ने, गहना कहदे वास्ते पाया जांदा है सोहना लगन वास्ते, पर ये जिहड़े दुनियावी गहने ने बेशक इन्हां दी कीमत घट होवे, बेशक बंदा इन्हां गहनियां नूं पा के उन्ना सुंदर ना लगे, पर जिन्ना बंदा गुणा दे गहने पाके सोहना लगदा। मारे कहिंदे तेरे अंदर गुणा दा गहना होना चाहीदा है, तेरे अंदर गुण होने चाहीदे ने। भगत जी नूं पुछिया सी कवन सो अखर कवन गुण, कवन सो मणिया मंत, कवन सो वेसो हो करी जित वसिया वी कंत। कहिंदे केड़ा गुण है, की करना चाहीदा, केड़ा गहना पाउणा चाहीदा है कि उस परमेश्वर कंत नूं मैं अपने वस दे विच कर लवां, भाव कि उह परमेश्वर मेरे वस दे विच आ सके। ते भगत जी कहिंदे ने नेवण सुअखर खावण गुण जीबां मणियां मंत। कहिंदे सब तो पहला है निम्रता दा अखर सिखणा, निवण सुअखर, दूसरा है खावण गुण खिमा, जे गलती कीती है ते कहिंदे खिमा मंग लैणी, गलती मंग लैणी, उहदे तो वड्डा कोई गुरसिख नहीं हो सकदा। क्योंकि अज दा समां इह चल रिहा कि अज असी अपनी गलती मन्नण वास्ते भी कदे तैयार नहीं हुंदे कि मैं आ गलती कीती आ, मैं आ भुल कीती, क्यों? क्योंकि साडी हौमे नूं किते सट ना वज जावे, हौमे नूं सट ना लगे। निम्रता होनी बहुत जरूरी है। निम्न सुअखर खवण गुण जेबा मणिया मंत, कहिंदे जेबा तो हमेशा मिठा बोल बोलना चाहीदा, अपनी जबान तो कदे भी किसे नूं कदे फिक्का नहीं बोलना चाहीदा। आपां बहुतात अज देखदे आं, अज कल मीडिया दा युग है, ते शायद असी ओनी बाणी ना पढ़दे होईए जिन्नी असी निंदिया करदे आं, जिन्ना असी भद्दे शब्द जिहड़े बोलदे आं अज दे समें दे विच देखिया जावे, ते कई शब्द पढ़ के इदां लगदा वी इह ते गुरसिखां दी बोली ही नहीं है।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਔਗਣ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਖਿਰਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੇਵਲ 40 ਦਿਨ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਜੇਬਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਵੀ ਕੰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੇਸ ਬਣਾ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਹਿਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ।

पर कहिंदे जिहड़ा गुणा दा गहना ना वह निरंकार नूं खुश कर सकदा है। गुणा तो बिना उस निरंकार की खुशी नहीं मिल सकती। जेडे गुण परमेश्वर दे ने वह गुणा दे आपां धार नहीं बनना है जो गुरसिख नूं गुरु साहिब ने गुण दिते ने। तो इसे करके महाराज जी कहिंदे ने कि महापुरखां दा जिहड़ा जीवन है वह जीवन किहो जिहा हुंदा है। अगे सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्श

ने आन के तैनू केसां तों फड़ लिया, भाव तेरी मौत दा जिहड़ा समा है वह समा जदों आ गया ते कहिंदे तेरा कोई भी हवाल भाव तैनू कोई भी बचाउण वाला नहीं होना, केवल ते केवल नाम ही सानू जिहड़ी जमा दी मार तों बचा सकदा है। मारे कहिंदे सिमरन भजन दया नहीं कीती तौ मुख चोटां खाएगा, कहिंदे जे सिमरन भजन नहीं कीता किसे ते दया नहीं कीती ते याद रखी तैनू चोटां खानियां पैणगियां। तो इस करके सिमरन करन दे नाल ही, क्योंकि वक्खो वक्खरे साधन कईआं ने कुछ दस्या कईआं ने कुछ दस्या, पर प्यारिओ कलयुग दे विच महाराज सच्चे पातशाह की कहिंदे ने, कहिंदे जत संजम तीर्थ उन्ना जुगां का धर्म है, कल में कीर्त हरनामा जुग जुग आपको अपना धर्म है, सोध देखो वेद पुराना। कहिंदे वक्खो वक्खरे जुगां दे वक्खो वक्खरे साधन हुंदे ने, पर कलयुग दा साधन की है, केवल ते केवल कीर्तन है।

हे सतगुरु सच्चे पातशाह अपने दास नूं किरपा करके आप ही रख लेना, दास ते किरपा करनी बख्शिश करनी। इउं सतगुरु सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज उस परमेश्वर दे उस निरंकार दे चरणां दे विच अरदास बेनती करन दी भी जाचना दस रहे ने। कहिंदे केवल ते केवल नाम दे नाल जुड़ना है, जदों आपां नाम जपांगे जदों आपां बाणी पढ़ांगे फिर गुरु साहिब जी दी किरपा होवेगी ते जिहड़े साडे 84 दे बंधन ने उह कट्टे जा सकदे ने। होर कोई चारा नहीं है, जिन्ना मर्जी कोई जतन करता रहे। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने जिन्ने भी कर्म कांड ने, कर्म धर्म पखंड जो दिसै तिन जम जगाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटै। जिन्ने भी कर्म कांड ने होर सारे राह च जमदूत ही खो लैंदे ने ते कहिंदे निर्वाण कीर्तन गावो करते का, कहिंदे उस परमेश्वर दा निर्वाण कीर्तन जिहड़ा है निष्काम होके उस परमेश्वर दी वडियाई

गुणकरी अर देव गंधारी गंधारी सीहुती उचारी तनासरी ए पांचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग में।

ले आना अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वह गाव है पांचों संग बरंगन लाव है बैरारी करनाटी तरी गवरी गाव है आसावरी तह पाछ है सिंध भी अलापी श्री राग से पांचों थापी सालू सारंग सागरा और गोण गंभीर अष्ट पुत्र

ऐसे दिन प्रताप ते दिन बड़े प्रताप, तीन लोग जय जय द्वारा सकल द्वार पुछाड़ के गृह द्वार, द्वार भांगे किला जस गुरुदास द्वार, द्वारा राज करेगा खालसा करे न कोई पार हो से मिलेंगे द्वारा उड़की सभा मिले की कर कुरा पा साठ का बाजे फते का नहीं करेंगे तार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुग दे संभव संसार दाव सब जुते दुकाल मरना सीधे अनुसर पे सदा अंग संगे अपन भूमि पूते देख देखो फते न सुदे तज जनान गुरु गोविंद सिंह जी सरकार जी सहाय दरबार दरबारा सत्संग सहन इनकार लक्ष्मी कृत दरबारा सर्वदेव नमस्कार दोहरा।

शीश पट कत जाके कान में खजूरा था से मुंड छट कत मित्र पुत्र हूँ के शोक सौ आख गोचर या फल फूल को भचैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न भोक सौ कहा भयो भेड़ जो खसत शीश वृक्षन सो माटी को भचैया बोल पूछ लीज जोक सौ कामना अधीन काम क्रोध में।

पाए ठंडे सदा बन में रहत वृज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक युग एक ठौर बास करे काग और चीर देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जो गया बरागी बने कब हूँ सन्यास भेष बन के दिखावई। कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी कहूँ दंडधारी होय के लोगन भ्रमावई। कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीतर पुकारे पर शीत काल कुंचर ओगद अनेक दा पुकार ही। कहा भयो जो पे कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर डाक उठार हंसो मार ही। कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही। डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पे पाइए अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के कियत जो पे पायत अजाप देव पूतना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर पता।

काफी मानस की जात सब एक पहचान वो करता करीम सोई रास ग्रहीम उई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही की सेव सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज उई मान सब एक पै अनेक को भ्रमाओ है देवता देव जाच गंधर्व तुरक हिंदू न्यार न्यार देशन के

आग दे कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होके फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते गछ मछ केते उनको करत भज, केते अच वच हुए सब पच उड़ जाएंगे। केते नब बीज अच पच को करेंगे भज, केते को प्रत्यक्ष हुए बचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यो तेज में अतेज जैसे तेज लीन, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत केत रोबत मरत केत, जल में डुबत केत आग में जरत है। केत गंग वासी केत मदि नाम का निवासी, के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत केत भूम में गड़त केत, सुआ पे चढ़त केत दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त केत जल में रहत केत, ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे, दानो बड़े बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे, जापसी घस हारे, चंदन लगाए हारे, चोचार पूज हारे, पाहन चढ़ाए हारे, लापसी गा हरे, गोरन मनाए हारे, मटी मटली बहारे, भीतन लगाए हारे, छापसी गाय हारे, गंधर्व बजाए हारे, किन्नर सब पच हारे, पंडित।

न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न वर्मं न सर्मं न साके न वर्मं न चर्मं न कर्मं न वाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे कहूं कंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज

कहूँ धर्म के कर्म के हरम जाने कहूँ धर्म के कर्म के भरम माने कहूँ चार चेष्टा कहूँ चित्र रूपं कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औखधि रोग के सुख सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत वाणी कहूँ जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी साधकी तामसी हो कहूँ योग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ योग जुगतं कहूँ भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्टि की पृष्ठ की ऋष पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ गोक की काव्य कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव्य रूपं कहूँ चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण गोपार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राजसाजं कहूँ राजरीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश व्याख्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान कीर्तन कहूँ मलेज व्याख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ छैल छाला धरे छत्रधारी कहूँ राजसाजं धे राजाधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता छेदी अक्षयाद्वैभिधाता न त्रस्तं न ग्रस्तं।

जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात, जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं ब्योतबान, जय जात पात नहीं शत्रु मित्र, जय नेह गेह नहीं चैन चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम भेख, जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात, जय नाम धाम नहीं वर्ग ब्यात, जय रोग शोक नहीं शत्रु साध, जय त्रास वास नहीं।

जेहे राग न रूप न रेख दुखंग जेहे ताप न साप न शोक सुखंग जेहे रोग न सोग न भोग भुयंग जेहे खेद न भेद न छेद छयंग जेहे जात न पात न मात पितंग जेहे रच्यंग छत्री छत्र छितंग जेहे राग न रेख न रोग भणंग जेहे द्वैख न दाक न दुख गणंग जेहे अंड ते ब्रह्मंड रचियो जस चार करी नव खंड सचियो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधु रूपिंद नगिंद नगंग श्रेय जच गंधर्व फुणिंद भुजंग रच देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेतज उत भुजंग किये देव देव सराध पितंग अनखंड प्रत

एक नाम बिना नहीं कोट वृति एम भेद उचारत सार सुती जो वारस के जस के रस है त्यो भूल न काल फंदा फस है त्व प्रसाद नराज छंद अगंज आद देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्धता सदैव सर्व सात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिय सदैव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अधोग ताग तक है अभूत ब्रह्म भेख है न तात मात जात है न पात चिहन वर्ण है अदेघ सेघ भेग है सदीव विश्व भरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्व भरण है जिमी जमान के बिखे सदीव करम भरम है अद्वेख है अभेघ है अलेख नाथ जानिय सदीव सर्व ठौर मै विशेख अन मानिय न जंत्रमय न तंत्रमय न मंत्र बस आवई पुराण यो कुरान नेत नेत के बतावई न करम न धर्म न भरम मैं बताइए गंज आदि देव है कहो सो कैसे पाइये जिमी जमान के बिखे समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न वान है समान रूप जानिए मकीन ओ मकान अप्रमाण तेज मानिए न दे है न गे है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात

है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न नेह है न गे है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न शोक है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न शीत है न सोच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र के विभूत।

है, न यंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को रलाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, अनंग है, अगंज से विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ ओंकार है, न आद है, न गाद है, न व्याध को विचार है, न रंग राग रूप है, न रूप रेख रार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है, गजाधपि नराधपि गरंत सेव है, सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा, अगस्त आद जे बड़े तपस्त पे विशेखी है, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखी है, अगाध आद देव की अनाद बात मानी है, न जात पात मंत्र मित्र सत्र सनेह जानी है, सदैव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में।

हस्त कीट बिखै वसै सब ठौर मैं निर्धार। जात पात ना तात जाको मंत्र मात ना मित्र, सर्व ठौर बिखेरम यो जेह चक्र चिहन न चित्र।

गौड़ ना भी लभी कर ब्रह्म से स्वरूप, रात दिवस ना मत ऊर्ध ना भूम आकाश अनूप, जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन, तीर्थ जात्रन देव पूजा गौर के न अधीन, सर्व सपद पतार के तर जानिए जह जोत, शेष नाम सहंस फन नहि नेत पूर्ण होत, सोत सोत हटे सब सुर विरोध दानव सरब, गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब, पड़त पड़त थके महाकप गढ़त गाढ़ अनंत, हार हार कहियो कब

नारद आदिक वेद व्यास मोन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट तुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पशर पार सोद सोद थके महासुर।

दो धारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो शिव खासुर मर्दन रमक बर्दन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्टे उदंडन रूप ते चंडासुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र

डावरू डवंगे बबर बवंगे बुजा फरंगे तेज बरंग लंगुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायद चमके भूखण दमके यद सिद्ध झमके फुंक फनंग जय जय हो सी मै खा सुर मर्दन रंभ कपर्दन दैत जिणंग। चंडासुर चंडन मुंड बिमुंडन खांडे अखंडन खून किते दामनी दमंगन धुजा फरंगण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विपर खण दुष्ट प्रकर खण पुष्ट प्रहर खण दुष्ट मथे जय जय हो सी मै खासुर मर्दन भूमा कासल उर्द अधे दामनी प्रहासन सुषभ निवासन श्रेष्ट प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन जोध प्रमाचन हृदय नराचन धर्म प्रते

सहते सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निबाहन तेज तुलंग जय जय हो सीमाघासुर मर्दन भूमाकाश पताल जलंग चाचर चमकारं चिच्छोर हारण धूम दुकानन द्रप मथे दाण विवृदंते जोग जयंते मदज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाश।

दामने प्रकाशे अंतरनासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दान वे प्रकर खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रधर खंड पितल तले अष्टायत बाहन बोल बाहन संत बनाहन गूढ़ गति जय जय होशी मय खासुर मर्दन आद अनाद अगाद प्रति दुख दुख प्रवच्छन सेव कर क्षण संत व्रत क्षण शुद्ध सरे सारं सन्ना हे दुष्ट प्रदाहे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमान्य अतुल प्रमाण्य संत जम

आगप पंके भुजा फरन के शुद्ध गति जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते तछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक बटे पापान बिहंडन दूष प्रचंडन खंडे अखंड।

रक्ता सुरमर्दन चंड चक्र दंदान वर्दन बिडाल बदे सरदार विवरखन दुर्जन धरखन अतुल अमरखन धरम तुझे धूमराज विधुम सन श्रोण तुम सन सोम।

अनंत तव कहो जथामत त्रैण तंत। करता करीम गादा कृपाल अद्वै भूत अनभय दयाल दाता दुरंत दुख दुख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत। कई उच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जापो प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूढ़ क्यों न सेवंत ताहे। कई मूढ़ पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पलट सूरत सिजदा।

दीनन की प्रथ पाल कर नित संतु बार गनी मन गारे पच पशु नग नाग नराध सर्व समय सबको व्रत पार पोखत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम विचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर दे दनहार दाहत है दुख दोखन कौदल दुजन के बल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड बहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार पार न पाए सके पदमा पद भेद कते वेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राजक रूख रुहान की रोज न डार कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव देव खपे हंगेवना भेव लख्यो भ्रम से भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेब थके कर हाथ नाए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पत सो किन श्री पदमा पत पाए आद अनंत अगाध द्वेक सो भूत भवेख भवान अभय है अंत विहीन अनाथमाव दाग दोख छिद्र छह लोगन के करता हरता जल मैं थल मैं भरता प्रव है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न वह है देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त केह अच्छे है जान को देद अजान को देद जमीन को देद जमान को दह काहे को डोलत है तुम रे सुत सुंदर श्रीपद मापत ल

की बात कहा कहे तो सौ सो बेट ही के पट बीज बचावे। जच भुजंग सुदान देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सब सिरण्यावे। पाय सके नहीं पार बाहू को नेत ही नेत वेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ नावे। नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हु मिल गायो। वेद कतेव न भेद लखियो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंदन ध्यायो। ध्यान धरो जह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब बजहारे। भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे। आद अनाद अगाध बेगद वेख जप्यो तिन्हु कुल तारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरो कर भेष तबोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कूट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे बहुकारे। दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया चित्र छत्र के धरैया छत्र। धारियो के छलैया महासत्रन के साल हैं। दान के दिवैया महामान के बटैया। अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल हैं। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया। महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान हैं। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्ध ताके दाता देव। काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल हैं। पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमाल ध्याव। गुर कर देजी गुण गाव तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे। अरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने। पच्छम के पच्छमी पछान निज काम है। मरटा मंगेले तेरी मान सो तपस्या करे। देड़ वै तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंग वाली। दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे में चलत है। रोह के रोहे दिमाग देश के मंगेले वीर। बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीस न्यावे। तिब्बती दे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें दोहे ध्यायो तिन्ह पूर्ण प्रताप पायो। सर्व धन धाम फल फूल सिंह फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश। गंग धान को अभेज कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण। और काहू बिन दीन साधा दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार। सब विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचतता है। जेठी की जिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार। किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है। किते ससरासी किते सूरज उदासी। किते मुंडिया प्रकाशी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते व्यास प्रवीण। किते कुमेर कुलीन किते जच कहियत है। करते हैं विचार बैना पूरन को पावे पार। ताहिते अपार निराधार लहियत है। पूरा अवतार निराधार है न पारावार। पाई है न पार वै अपार के वखानीय। अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी। महारूप हूँ के राशि है नासी के मानीय। जंत्र हूँ न जात जा की बाप हूँ न माय जा की। पूर्ण प्रभा की सो छटा के अन मानीय। तेज हूँ को तंत्र है के राज सिंह को। जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र क्या के जानीय। तेज हूँ को तर है के राज सिंह को सर है। कशुद्धता को घर है के सिद्धता के सार है। कामना की खान है के साधना की शान है। विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है। के रूप हूँ को रूप है को मत को प्रहार है। दीनन को दाता है के नीमन को गारक है। साधन को रचक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है। के क्रोध को अभूत है के अच्छा अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है। गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के शत्रुन के साल है। के मित्रन को बोकत है के वृद्धता की बासी है। जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है। के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है। के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है। अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है ईमान को दिवैया है। जंजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है। महीवन को मंड है के स्त्री न नर है। विश्व को भरण है के आपदा को हरण है। के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार पारावार हूँ को पार। जग की जत विचार सो विचार को निवास है।
हिंगुला हिमाल गावे बसी हल विद्या पूर्वी न पार पावे सत्य नास है देवन को देव महादेव हो के देव है निरंजन अभिवना दयाद विनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हो के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया तुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छपा काल इंद्री के कोल के हंस निश सिहारो मही राशि हुसैना पाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारासी पलाऊ गढ़ रूपा के सी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद नी के रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ की रत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सी सोसी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमासी हिमालय हर हार सी हला बनेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चंदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार वकांसी बिलंदावाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासीस के तुरंगी मकरान के वृतंगी तेरे गीत गायत है भखरी कंधारी गोर खरी गलती जचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर मैं बिराज जहाँ जहाँ जाइयत है पूर्ण प्रताप यंत्र मंत्र ते अतापिनाथ कीरत।

सदबल जाइय तेरा अंत ना पारावरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब ध्यावह सब ध्यावह तुद जी, हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर ध्यावो संतो जी, सब दुख विसारनहारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो से वह जो से वह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर ध्यावह हर ध्यावह तुद जी, से जिन जुग मह सुख वासी। से मुकत भय जिन हर ध्याया जी, तिन टूटी जम की फासी। जिन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी, तिन का भव सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब ताप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पड़े बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जीव डियवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नहचल करता सोई। तुद आपे भावे सोई वरते जी, तू आपे करह सोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सुचियार मैंडा साई। जो तौभा वै सोई थीसी, जो तू दहे सोई हाँ पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनों कृपा करह तन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनू तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिंदु जा अवर ना कोए। तू कर कर वेखह जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ भैले निवासा। पानी पावक तिन है किया, पंक जो मोहो पग नहीं चाले। हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतस मूड मना।
हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाव। ना हाँ जती सती नहीं पड़िया, मूरख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई परापत मानख देहुरिया। गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरै कतै नकाम। मिल साद संगत भज केवल नाम, शरण जाम लाग भव जल तरन कै। जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाव। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधन जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की राखो शर्मा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई, बहर असर का काट समाथा। श्री असकेत जगत के नाथा, दुति बान सौ दौवर कर काट दयो। असध्वज नर नाहर पुनरा छस का काटा सीसा। श्री असकेत जगत के ईसा, ओपन ब्रिष्ट गगन ते भई। सभैन आन बधाई दई, धन धन लोगन के राजा। दुष्टन दाह गरीब नवाजा, अखल भवन के सृजन हारे। दास जान मोहले हो उबारे, कभी बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ दरछा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सभय तुम घावो, आप हाथ द मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सभय कर तारा। मोर अच्छा निज कर द करिय, सब बैरन को आज संघरिय। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याम, जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया, चुन चुन सत्र हमारे मारिया। आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरन काल का त्रास नवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री असध्वज ज्यों करियह रच्छा। राख लेहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सुहाए प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा पपधरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विषण प्रगासा, सकल काल का किया तमासा।

महा मूड कश भेद ना जानत, महादेव कौ कहत सदास, निरंकार का छीनत नह भव। आप आपनी बुद है जीती, बरंत भिन्न भिन्न तोह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उत्भुज खान बहर रच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत तुतपाता, सकल मलेच्छ करो रण घाता। जे अस दुज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार धिए हैं, ताके काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहीं सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध घर मो सब हुई, दुष्ट छा छुए सकै न कोई। एक बार जिंत मैं संभारा, काल फांसते ताहीं उबारा। जिन नर

चौपई सम सतरै सहस भणी जय अर्थ सहस भुन तीन कह जय भादव सदी अष्टमी रवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री।

कपतमस्त शुभमस्त अफजू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाथ दय राख मोहे मन क्रम बचन बिचार चौपई मन अग्नि सह प्रथम बनाऊ किशन बिशन कबहू न ध्याऊ कान सुन पहचान नतन सो लिव लागी मोरी पग इन

की लाज विचार, अपना जान मुझे प्रत परिय, चुन चुन सत्र हमारे मरिय, देख देख जग मैं दो चले, राख आप मुहे और ना दले, तुम मम करो सदा प्रत पार, तुम साहिब मैं दास तिहारा, जान आप ना मुझे नवाज, आप करो हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा, दास जान कर कृपा करो मुहे, हार परा मैं आन द्वार तोहे, अपना जान करो प्रत पारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा।

तोहे त्याग कहाँ चित तामे धरो अब रीज के देहो वह हम कहो जहाँ बिनती कर जोर करो जब आओ कि औध निदान बने अत हीरन मैं तब जूझ मरो दोहरा दसम कथा भागवत की भाखा करीब नाय अवर वासना नाहे प्रभु धर्म जत के चाय सवैया धन जियो तह को जग मैं मुख ते हर चित मैं जुद बिचारे देह अनत नानत रह जस नाव चढ़े भाव सागर तारे धीरज धाम बनाए एह तन बुद्ध सदीपक ज्यों जियारे ज्ञान है कि बढ़नी मनो हाथ लै कातर ताकतवार बुहारे दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत स्वर्ग वास रघुबर कर सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याह छह सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परि लौ लिहो सुधारा दोहरा नेत्र तुम के चरण तर सत द्रव तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विबाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्रीयस पान

0: मूर्ख पंडित हिकमत हो जत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गावा वै मंगे मुख द्वार। जति सदा में जुगत न जाने छड़ पह कर बार, सबको पूरा पे हो वह घटना कोई आखे, पत परवाना पीछे पाई है ता नानक तो ले आ जा पे महला पहला।
1: वधी सो जगना

पौड़ी तुर कर्म जिना का तुत पाया तत् ने खसम त्याया एना जनता कै बस किच ना ही तिरपे की जगत पाया एक नानू तुम मिल रहे का पत खुवाया गुर कृपा ते जाने।

0: जुग जुग फेर मिटाइया ज्ञानी बुझेता है। सत जुग रसंतों का धर्म गैरथ वाह, त्रेतैर जित तय का जोर गैरथ वाह, द्वापुर तपै का सत गैरथ वाह, कल जुग रतगन का अगैरथ वाहो महला पहला।
1: शाम कै सितंबर स्वामी सच मैच साच रहे, सबको सच माव

पौड़ी सतगुरु पिटोहारे आज ते मिलिया खसम सुमालिया जिनकर उपदेश ज्ञान अंजन दिया एनी नेत्र जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लग

पौड़ी चितेंद्र सब को वेख नदरी हेठ चलाइंदा आपे देव डियाइया पे कर्म कराइंदा वडहो वडा बेट में।

अंदर कीड़ा होए जित दानंत दिया बाज ना कोए पहला पानी जे जधरिया सब कोए सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवरे सोए नानक सूतक ना।

पौड़िया पे करना क्यों कला भेजते धारी है देखा किताब ना तरक जी पके सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आए बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहब मन विसारी है अपन हती अपना आपे का सवारी है अपन हती अपना आपे ही कार सवारी है।